0: कफचे से तेजी के साथ चावलों को मिलाएं।
1: एक से दो मिनट तक चावलों को मिलाएं। जब आमेजा चावलों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हाथ से झलने वाले पंखे से चावलों को ठंडा कर लें। जब तमाम भाप खत्म हो जाए तो चावलों को पलटकर दूसरी जानिब भी अच्छी तरह पंखा झलें। आज हम गाजर और शीता के मशरूम के स्लाइसिस को दरमियान में रखते हुए सुशी राइस की तीन तहें बनाएंगे। सजावट के लिए हम भिंडियां, अंडा और सालमन इस्तेमाल करेंगे। पहले एक तहाई सुशी राइस में तेलों को शामिल करें। चावलों को बराबर फैलाने के लिए एक अलग डिब्बा इस्तेमाल करें। आधे तिलों को छिड़क कर चावलों को ऊपर नीचे करके अच्छी तरह मिला लें।
2: सुशी
0: राइस तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि चावल का हर दाना अपनी शक्ल बरकरार रखे। जब चावलों में अज्जा जैसे तिलों को मिलाएं तो उन्हें फैलाकर अज्जा को यकसा तौर पर उसके ऊपर छिड़के ताकि चावलों को ज्यादा हाथ ना लगाना पड़े।
1: बाकी बचे हुए तिलों को भी मिला दें। दोनों अकसाम के सुशी राइस को प्लास्टिक रैप या गीले कपड़े से ढांप दीजिए। इसके बाद हम चावल की तहों के दरमियान लगाने के लिए शीता के मशरूम के स्लाइस और गाजर की पट्टियां तैयार करेंगे। खुश्क शीता के मशरूम्स को पानी की काफी मिकदार में पूरी रात के लिए भिगो दें। अगर आपके पास वक्त कम है तो उन्हें 40 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में 30 मिनट के लिए भिगो दीजिए ताकि वो ताज़ा हो जाएं। जायद नमी को नचोड़ कर निकाल लें, डंठल को काट कर हटा दें और टोपी वाले हिस्से को बारीक स्लाइसेस में काट लें। एक बर्तन में स्लाइसेस डालें और 300 मिलीलीटर पानी शामिल करके ढकना ढक कर चूल्हे पर चढ़ा दीजिए।
0: जब पानी में उबाल आ जाए तो आंच कम कर दें। 15 मिनट पकाने के बाद सोया सॉस और चीनी डालकर बगैर ढके तमाम भाप खत्म होने तक पकाएं। माया गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि शीता के स्लाइसेस सतह पर आ गए हैं और जायका भी बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। बर्तन को ठंडा होने के लिए छोड़ दें जिससे शीता के स्लाइसेस को जायका जस्ट करने में मदद मिलेगी।
1: गाजर को 3 सेंटीमीटर लंबी और 2 मिलीमीटर चौड़ी पट्टियों में काट लीजिए।
0: अब एक बर्तन में 200 मिलीलीटर पानी डालें। हल्की आंच पर गाजर की पट्टियां उबालें। 5 मिनट बाद चीनी और नमक शामिल करके 5 मिनट मजीद पकाएं। चूल्हा बंद करके गाजर की पट्टियों को जायका जज्ब करने के लिए बर्तन में ही रहने दें। आइए केक के किनारे सजाने के लिए भिंडियां तैयार करते हैं। एक चुटकी नमक भिंडियों के ऊपर डालकर रगड़ें ताकि रुएं खत्म हो जाएं।
1: एक बर्तन में पानी उबालें और तैयार की गई भिंडियां नमक के साथ पकाएं। 1 मिनट के बाद उन्हें निकालकर बर्फ वाले पानी में डालकर ठंडा कर लें। पानी निकाल लें। डंठल काटकर भिंडियों को बारीक स्लाइसेस में काट लीजिए। इस तरह से हम भिंडियों के कुदरती रंग और साख्त को इस्तेमाल करते हुए उनसे सितारों की शक्ल की सजावट हासिल कर सकते हैं। अब पकाते हैं किंची तमागो यानी बारीक बारीक कटा हुआ अंडे का क्रेप। किंची का मतलब है चमकती हुई पट्टियां और तमागो अंडे को कहते हैं। तेज जर्द रंग के अंडों की पट्टियां अक्सर त्यौहार की डिशों में इस्तेमाल की जाती हैं। एक छोटे प्याले में एक अंडा तोड़ लें, सफेद झिल्ली को हटा दें जो कि सफेद रेशादार उजलात हैं और अंडे की जर्दी से जुड़े होते हैं।
0: एक चुटकी नमक अंडे में डालें और अच्छी तरह फेंट लें। फ्राइंग पैन को गर्म करें। पेपर नैपकिन को इस्तेमाल करते हुए तेल की हल्की सी तह लगा दें। एक खूबसूरत क्रेप बनाने के लिए जितना मुमकिन हो उतना कम तेल इस्तेमाल करें। सबसे अहम नुक्ता फ्राइंग पैन का

से बनी सुशी हमने वहां खाई और मेरी बेटी का तो खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं था कि पाकिस्तान में बैठकर अपनी पसंदीदा सुशी मिल गई। तो आप लोग भी अपने इलाके में दस्तियाब अज्जा से हमारी तरकीब के मुताबिक सुशी केक बनाएं और किसी पॉटलक पार्टी में लेकर जाएं और खूब दाद वसूल करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। और इसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए nhk.jp/urdu। पता एक बार फिर नोट कर लें nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाज़त दीजिए

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 31 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। नेपाल में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद लापता लोगों की संख्या 1.5 गुना बढ़कर 4,700 से अधिक हो गई है। वहीं 900 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार सोमवार सुबह तक नेपाल में 903 लोगों की मौत और 4,247 लोगों के लापता होने की पुष्टि हो चुकी थी। पिछली घोषणा के बाद इन दोनों आंकड़ों में इजाफा हुआ है। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी शामिल हैं। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार चीन में 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 546 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 10,000 सैन्य और अन्य कर्मियों को भेजा है। वो लापता लोगों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टरों और अन्य उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। मध्यवर्ती नेपाल के रसुवा में एक पनबिजली घर के आसपास के क्षेत्रों में भी खोज और बचाव अभियान जारी हैं। बताया जा रहा है कि वहां एक सुरंग में 100 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ के कारण कई इलाकों में बिजली और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने के कारण बहुत से निवासियों तक पहुंच पाना असंभव है। उन्होंने आगे कहा कि कई ऐसे समुदायों में भोजन, पेयजल, स्वच्छता उत्पाद और अन्य दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की कमी हो रही है। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों का कहना है कि ग्लेशियर के ढहने के कारण नेपाल चीन सीमा से लगे इलाकों में आकस्मिक बाढ़ आई थी। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सरकार के अधिकारियों ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। चीन की ओर के 90,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान के लिए 2100 से अधिक सैन्य, पुलिस और अन्य कर्मियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जांच डेटा और अन्य जानकारी के विश्लेषण से पता चलता है कि ये आपदा पेचिंग समयानुसार बुधवार सुबह लगभग 10:52 पर नेपाल में लगभग 5,200 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर के ढहने के कारण घटी थी। उन्होंने बताया कि इसकी वजह से बर्फ और चट्टाने तेजी से लुढ़कते हुए 4,000 मीटर नीचे आ गईं। उन्होंने कहा कि ये हिमस्खलन पहाड़ों की ढलानों से होते हुए चीन और नेपाल के बीच सीमा चौकी तक पहुंचा और मलबे के प्रवाह में बदल गया। अधिकारियों ने बताया कि हिमस्खलन को पुल तक पहुंचने और 27 इमारतों और संबंधित सुविधाओं सहित पूरे क्षेत्र को समतल करने में केवल 6 से 7 मिनट का समय लगा। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य स्थित लारक द्वीप पर ईरान के 2 रॉकेट लॉन्चरों पर हमला किया है। अमरीकी अधिकारी ने एनएचके को बताया कि हमला रविवार को किया गया। अधिकारी ने बताया कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सैनिकों को जलमार्ग में रॉकेट दागने की तैयारी करते देखा गया। इन रॉकेटों पर बारूदी सुरंगें बिछाने की विस्फोटक सामग्री लदी थी। पिछले सप्ताह अमेरिका की केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने घोषणा की थी कि अमेरिकी सैनिकों ने जलडमरू मध्य के अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्ग में IRGC द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। हमले के बाद IRGC ने अपने वक्तव्य में कहा कि कई सैनिक और नागरिक हताहत हुए हैं। उसने कहा कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। भूमध्य सागर में साइप्रस के निकट 260 से अधिक लोगों को ले जा रही एक नौका पलट गई है। नौका में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लापता हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार ये नौका उत्तरी साइप्रस के किरिनिया बंदरगाह से तुर्की की ओर जा रही थी। रविवार दोपहर को ये पलट गई। समुद्र में हेलीकॉप्टरों और अन्य संसाधनों की मदद से खोज और बचाव अभियान जारी है। मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 23 अन्य अब भी लापता हैं। खबरों के मुताबिक बंदरगाह से रवाना होने के कुछ ही समय बाद नौका में पानी भरने लगा। स्थानीय अधिकारी कारणों की जांच कर रहे हैं। आइसलैंड के लोगों ने जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ में शामिल होने को लेकर वार्ता बहाल करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। स्थानीय मीडिया केंद्रों का कहना है कि शनिवार को हुए मतदान की गिनती से पता चलता है कि 52.8% लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में, जबकि 47.2% लोगों ने समर्थन में वोट डाला। ये जनमत संग्रह 2024 में सत्ता में आई आइसलैंड की गठबंधन सरकार द्वारा कराया गया। पश्चिमी मीडिया केंद्रों की खबरों के अनुसार सरकार के इस कदम के पीछे एक मुख्य कारण नॉर्डिक क्षेत्र के आसपास के सुरक्षा माहौल में हो रहे बदलाव है। गौरतलब है कि आइसलैंड इसी क्षेत्र में स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की इच्छा व्यक्त की है। ग्रीनलैंड भी नॉर्डिक क्षेत्र में स्थित है। यूरोपीय संघ की सदस्यता के समर्थकों को उम्मीद थी कि अगर आइसलैंड ईयू में शामिल हो जाता है और यूरो मुद्रा को अपना लेता है तो उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी। हालांकि ये चिंता बरकरार रही कि ईयू में शामिल होने से आइसलैंड के मुख्य मत्स्य उद्योग पर प्रतिबंध लग सकते हैं। 2009 में आइसलैंड ने अपनी अर्थव्यवस्था के बहाली प्रयासों के तहत ईयू में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन ईयू में प्रवेश को लेकर सतर्क रुख रखने वाली सरकार के सत्ता में आने के कारण इस वार्ता को स्थगित कर दिया गया। जापान के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट फुजी के एक हाइकिंग ट्रैक पर बेहोश पाए गए एक इंडोनेशियाई व्यक्ति की मौत हो गई है। ये 57 वर्षीय व्यक्ति शनिवार को अन्य लोगों के साथ पर्वतारोहण के लिए गया था। पुलिस के अनुसार वो सुबह करीब 11 बजे 5वें स्टेशन पर पहुंचा था, लेकिन दोपहर के भोजन के बाद वो निर्धारित समय पर मिलने के स्थान पर नहीं पहुंचा। हालांकि बाकी लोगों ने यात्रा जारी रखी। पर्वतारोहियों को ये व्यक्ति शाम करीब 5 बजे 7वें स्टेशन पर एक हाइकिंग ट्रैक पर औंधे मुंह बेहोश पड़ा मिला। इसके बाद पहाड़ी सराय के कर्मचारियों को सूचित किया गया, जो उसे 5वें स्टेशन पर लेकर गए। इसके बाद इस व्यक्ति को फुजी कावागुची को नगर के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। माना जा रहा है कि व्यक्ति की मौत हृदय रोग के कारण हुई है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड

जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 27वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि कई विकल्पों में से सबसे अच्छा कौन सा है।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम आज टोक्यो में रामेन की एक प्रसिद्ध दुकान में आई है। हारूसान हाउस का निवासी काइतो भी उसके साथ है। रेस्तरां में ऑर्डर देते समय ताम को यूकी की बात याद आई। यूकी एक जापानी छात्र है जो संगीत का अध्ययन कर रहा है और ताम से उसकी मुलाकात वियतनाम में स्वयं सेवकों के रूप में काम करते हुए हुई थी।
0: तो आइए सुनते हैं 27वें पाठ की बातचीत।
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番おいしいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले दुकानदार ने ताम और काइतो से कहा,
2: गोचुमो वा,
0: ऑर्डर देना चाहेंगे?
1: फिर काइतो ने ताम से पूछा,
2: ताम-सान, नानी इसरु?
0: ताम, क्या लोगी?
1: ताम को समझ नहीं आया कि कौन सा व्यंजन चुने, इसलिए उसने काइतो से पूछा,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: सबसे स्वादिष्ट कौन सा है?
0: काइतो ने जवाब दिया,
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो।
0: मिसो रामेन बढ़िया होता है।
1: ताम सोचने लगी,
3: मिसो रामेन,
1: मिसो रामेन।
0: तभी उसे वियतनाम में यूकी से हुई बातचीत याद आई।
2: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो।
0: जापानी रामेन स्वादिष्ट होता है।
2: बोकु वा मिसो रामेन गा सुकी नांदा।
0: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
1: तो ताम ने दुकानदार से कहा,
3: वताशी मिसो रामेन नी शिमास।
1: मैं मिसो रामेन लूंगी।
0: लगता है मिसो रामेन के साथ ताम की कुछ पुरानी यादें भी लौट आई हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: यानी सबसे स्वादिष्ट कौन सा है? ये वाक्य सीखकर आप पूछ सकेंगे कि तीन या अधिक चीजों में से सबसे बढ़िया कौन सी चीज है।
0: इस वाक्य में
4: दोरे
0: का अर्थ है कौन सा, उसके बाद आया है गा, जिससे पता चलता है कि
4: दोरे
0: इस वाक्य का विषय है।
4: इचिबान
1: का अर्थ है पहला नंबर या सबसे, और
4: ओइशी
1: का अर्थ है स्वादिष्ट, इसलिए
4: इचिबान ओइशी
1: का अर्थ है सबसे स्वादिष्ट।
0: अंत में लगा है
4: देसु का,
0: और अंतिम ध्वनि का सुर ऊंचा है, जिसका मतलब है कि ये प्रश्न है।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि तीन या अधिक चीजों में से किसी एक को किसी विशेषता के आधार पर दूसरी चीजों की तुलना में सबसे आगे बताते समय
4: इचिबान
1: का उपयोग होता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो सबसे स्वादिष्ट, तो
4: ओइशी
1: यानी स्वादिष्ट के पहले
4: इचिबान
1: लगाकर बनेगा
4: इचिबान ओइशी।
0: अगर आप कई चीजों में से किसी एक के बारे में पूछना चाहते हो तो

0: वाक्य के शुरू में कहेंगे
1: दोरे गा इचिबान।
0: इसमें
1: दोरे
0: प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है कौन सा।
2: अब अगर आपको पूछना है कि सबसे स्वादिष्ट कौन सा है तो आप जापानी भाषा में कहेंगे दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
1: ओइशी देसु। इचिबान ओइशी देसु। दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
2: अब एक बातचीत सुनते हैं जिसमें एक ग्राहक उपहारों की दुकान में मिठाई चुनने की कोशिश कर रही है।
3: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का।
4: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा
3: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का।
2: सबसे लोकप्रिय कौन सा है।
0: इस वाक्य में
1: निंकी गा अरिमासु
0: का अर्थ है लोकप्रिय है, जिसमें से
1: निंकी
0: का मतलब है लोकप्रिय और
1: अरिमासु
0: है क्रिया
1: अरु
0: यानी होना का मास रूप।
2: इसके बाद पुरुष ने उत्तर दिया
4: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
0: ये वाला बढ़िया है।
2: यहाँ
1: कोरे
2: का मतलब है ये वाला और
1: ओसुसुमे
2: का भाव है बढ़िया। अपना सुझाव देते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो दोस्तों आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: निंकी गा अरिमासु। इचिबान निंकी गा अरिमासु। दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का।
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। आप एक दुकान में सूटकेस खरीदने आए हैं। आप पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता के लिए जापानी शब्द है
1: यासुई। यासुई।
2: तो कोशिश कीजिए।
4: दोरे गा इचिबान यासुई देसु का। दोरे गा इचिबान यासुई देसु का।
0: अब मान लीजिए कि आप एक जापानी रेस्तरां में मेन्यू देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे सेट हैं और आप जानना चाहते हैं कि सबसे किफायती कौन सा है। किफायती के लिए जापानी शब्द है
1: ओतोकुना। ओतोकुना
0: जो एक ना विशेषण है।
2: याद रखिएगा वाक्य के अंत में ना विशेषण का इस्तेमाल करने के लिए अंत के ना को देस में बदलते हैं। तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो दुकानदार की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: ご注文は？
1: ご注文は？
2: का अर्थ है ऑर्डर देना चाहेंगे। ग्राहकों से ऑर्डर लेते समय रेस्तरां के बैरे इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं।
1: चूमुंग
2: का अर्थ है ऑर्डर और ग्राहक को सम्मान देने के लिए इस शब्द से पहले गो लगाया गया है।
0: वाक्य के अंत में लगा वा विषय सूचक है। वाक्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन ग्राहक संदर्भ से इसका भाव समझ सकते हैं, जो है ऑर्डर देना चाहेंगे या क्या लेंगे।
2: आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: ご注文は？タムさん、何にする？
6: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
6: 味噌ラーメン。
5: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
6: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज हम बता रहे हैं रामेन के बारे में।
0: दोस्तों रामेन मैदे से बने एक तरह के पतले नूडल्स हैं, जिन्हें उबालकर गर्म सूप में डालते हैं और ऊपर से उबला अंडा, मांस, सब्जी

0: और अन्य चीजें रखकर परोसते हैं।
1: मूल रूप से ये व्यंजन चीन से है, लेकिन जापान में इसके रूप में कई बदलाव आए हैं और अब ये जापान के प्रमुख व्यंजनों में गिना जाता है।
0: रामेन का सूप कई तरह का हो सकता है, जैसे चिकन या पोर्क की हड्डी या समुद्री खाद्यों से बना सूप। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मिसो यानी सोयाबीन के पेस्ट, नमक, सोया सॉस और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।
1: वैसे रामेन के नए और अनूठे रूप विकसित होते जा रहे हैं, जैसे चीज या ढेर सारी क्रीम वाला रामेन, और अलग अलग क्षेत्रों में इस व्यंजन की अलग अलग विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं।
0: अगर जापान आने का मौका मिले तो ये नूडल्स भी जरूर चख कर देखिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में फोटोग्राफर मिया एक संगीत प्रस्तुति में जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 31 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। नेपाल में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद लापता लोगों की संख्या 1.5 गुना बढ़कर 4,700 से अधिक हो गई है। वहीं 900 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार सोमवार सुबह तक नेपाल में 903 लोगों की मौत और 4,247 लोगों के लापता होने की पुष्टि हो चुकी थी। पिछली घोषणा के बाद इन दोनों आंकड़ों में इजाफा हुआ है। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी शामिल हैं। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार चीन में 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 546 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 10,000 सैन्य और अन्य कर्मियों को भेजा है। वो लापता लोगों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टरों और अन्य उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। मध्यवर्ती नेपाल के रसुवा में एक पनबिजली घर के आसपास के क्षेत्रों में भी खोज और बचाव अभियान जारी हैं। बताया जा रहा है कि वहां एक सुरंग में 100 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ के कारण कई इलाकों में बिजली और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने के कारण बहुत से निवासियों तक पहुंच पाना असंभव है। उन्होंने आगे कहा कि कई ऐसे समुदायों में भोजन, पेयजल, स्वच्छता उत्पाद और अन्य दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की कमी हो रही है। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों का कहना है कि ग्लेशियर के ढहने के कारण नेपाल चीन सीमा से लगे इलाकों में आकस्मिक बाढ़ आई थी। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सरकार के अधिकारियों ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। चीन की ओर के 90,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान के लिए 2100 से अधिक सैन्य, पुलिस और अन्य कर्मियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जांच डेटा और अन्य जानकारी के विश्लेषण से पता चलता है कि ये आपदा पेचिंग समयानुसार बुधवार सुबह लगभग 10:52 पर नेपाल में लगभग 5,200 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर के ढहने के कारण घटी थी। उन्होंने बताया कि इसकी वजह से बर्फ और चट्टाने तेजी से लुढ़कते हुए 4,000 मीटर नीचे आ गईं। उन्होंने कहा कि ये हिमस्खलन पहाड़ों की ढलानों से होते हुए चीन और नेपाल के बीच सीमा चौकी तक पहुंचा और मलबे के प्रवाह में बदल गया। अधिकारियों ने बताया कि हिमस्खलन को पुल तक पहुंचने और 27 इमारतों और संबंधित सुविधाओं सहित पूरे क्षेत्र को समतल करने में केवल 6 से 7 मिनट का समय लगा। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य स्थित लारक द्वीप पर ईरान के 2 रॉकेट लॉन्चरों पर हमला किया है। अमरीकी अधिकारी ने एनएचके को बताया कि हमला रविवार को किया गया। अधिकारी ने बताया कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सैनिकों को जलमार्ग में रॉकेट दागने की तैयारी करते देखा गया। इन रॉकेटों पर बारूदी सुरंगें बिछाने की विस्फोटक सामग्री लदी थी। पिछले सप्ताह अमेरिका की केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल

ब्रैड कूपर ने घोषणा की थी कि अमरीकी सैनिकों ने जलडमरू मध्य के अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्ग में आईआरजीसी द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। हमले के बाद आईआरजीसी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कई सैनिक और नागरिक हताहत हुए हैं। उसने कहा कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। भूमध्य सागर में साइप्रस के निकट 260 से अधिक लोगों को ले जा रही एक नौका पलट गई है। नौका में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लापता हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार ये नौका उत्तरी साइप्रस के किरिनिया बंदरगाह से तुर्की की ओर जा रही थी। रविवार दोपहर को ये पलट गई। समुद्र में हेलीकॉप्टरों और अन्य संसाधनों की मदद से खोज और बचाव अभियान जारी है। मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 23 अन्य अब भी लापता हैं। खबरों के मुताबिक बंदरगाह से रवाना होने के कुछ ही समय बाद नौका में पानी भरने लगा। स्थानीय अधिकारी कारणों की जांच कर रहे हैं। आइसलैंड के लोगों ने जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ में शामिल होने को लेकर वार्ता बहाल करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। स्थानीय मीडिया केंद्रों का कहना है कि शनिवार को हुए मतदान की गिनती से पता चलता है कि 52.8% लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में, जबकि 47.2% लोगों ने समर्थन में वोट डाला। ये जनमत संग्रह 2024 में सत्ता में आई आइसलैंड की गठबंधन सरकार द्वारा कराया गया। पश्चिमी मीडिया केंद्रों की खबरों के अनुसार सरकार के इस कदम के पीछे एक मुख्य कारण नॉर्डिक क्षेत्र के आसपास के सुरक्षा माहौल में हो रहे बदलाव है। गौरतलब है कि आइसलैंड इसी क्षेत्र में स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की इच्छा व्यक्त की है। ग्रीनलैंड भी नॉर्डिक क्षेत्र में स्थित है। यूरोपीय संघ की सदस्यता के समर्थकों को उम्मीद थी कि अगर आइसलैंड ईयू में शामिल हो जाता है और यूरो मुद्रा को अपना लेता है तो उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी। हालांकि ये चिंता बरकरार रही कि ईयू में शामिल होने से आइसलैंड के मुख्य मत्स्य उद्योग पर प्रतिबंध लग सकते हैं। 2009 में आइसलैंड ने अपनी अर्थव्यवस्था के बहाली प्रयासों के तहत ईयू में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन ईयू में प्रवेश को लेकर सतर्क रुख रखने वाली सरकार के सत्ता में आने के कारण इस वार्ता को स्थगित कर दिया गया। जापान के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट फुजी के एक हाइकिंग ट्रैक पर बेहोश पाए गए एक इंडोनेशियाई व्यक्ति की मौत हो गई है। ये 57 वर्षीय व्यक्ति शनिवार को अन्य लोगों के साथ पर्वतारोहण के लिए गया था। पुलिस के अनुसार वो सुबह करीब 11 बजे 5वें स्टेशन पर पहुंचा था, लेकिन दोपहर के भोजन के बाद वो निर्धारित समय पर मिलने के स्थान पर नहीं पहुंचा। हालांकि बाकी लोगों ने यात्रा जारी रखी। पर्वतारोहियों को ये व्यक्ति शाम करीब 5 बजे 7वें स्टेशन पर एक हाइकिंग ट्रैक पर औंधे मुंह बेहोश पड़ा मिला। इसके बाद पहाड़ी सराय के कर्मचारियों को सूचित किया गया, जो उसे 5वें स्टेशन पर लेकर गए। इसके बाद इस व्यक्ति को फुजी कावागुची को नगर के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। माना जा रहा है कि व्यक्ति की मौत हृदय रोग के कारण हुई है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्स पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 27वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि कई विकल्पों में से सबसे अच्छा कौन सा है।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम आज टोक्यो में रामेन की एक प्रसिद्ध दुकान में आई है। हारुसान हाउस का निवासी काइतो भी उसके साथ है। रेस्तरां में ऑर्डर देते समय ताम को यूकी की बात याद आई। यूकी एक जापानी छात्र है जो संगीत का अध्ययन कर रहा है और ताम से उसकी मुलाकात वियतनाम में स्वयं सेवकों के रूप में काम करते हुए हुई थी।
0: तो आइए सुनते हैं 27वें पाठ की बातचीत।
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番おいしいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले दुकानदार ने ताम और काइतो से कहा,
2: गोचुमो वा,
0: ऑर्डर देना चाहेंगे?
1: फिर काइतो ने ताम से पूछा,
2: ताम-सान, नानी सुरु?
0: ताम, क्या लोगी?
1: ताम को समझ नहीं आया कि कौन सा व्यंजन चुने, इसलिए उसने काइतो से पूछा,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: सबसे स्वादिष्ट कौन सा है?
0: काइतो ने जवाब दिया,
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो।
0: मिसो रामेन बढ़िया होता है।
1: ताम सोचने लगी,
3: मिसो रामेन।
0: तभी उसे वियतनाम में यूकी से हुई बातचीत याद आई।
2: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो।
0: जापानी रामेन स्वादिष्ट होता है।
2: बोकु वा मिसो रामेन गा सुकी नांदा।
0: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
1: तो ताम ने दुकानदार से कहा,
3: वताशी मिसो रामेन नी शिमास।
1: मैं मिसो रामेन लूंगी।
0: लगता है मिसो रामेन के साथ ताम की कुछ पुरानी यादें भी लौट आई हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: यानी सबसे स्वादिष्ट कौन सा है? ये वाक्य सीखकर आप पूछ सकेंगे कि तीन या अधिक चीजों में से सबसे बढ़िया कौन सी चीज है।
0: इस वाक्य में
4: दोरे
0: का अर्थ है कौन सा, उसके बाद आया है गा, जिससे पता चलता है कि
4: दोरे
0: इस वाक्य का विषय है।
4: इचिबान
1: का अर्थ है पहला नंबर या सबसे, और
4: ओइशी
1: का अर्थ है स्वादिष्ट, इसलिए
4: इचिबान ओइशी
1: का अर्थ है सबसे स्वादिष्ट।
0: अंत में लगा है
4: देसु का,
0: और अंतिम ध्वनि का सुर ऊंचा है, जिसका मतलब है कि ये प्रश्न है।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि तीन या अधिक चीजों में से किसी एक को किसी विशेषता के आधार पर दूसरी चीजों की तुलना में सबसे आगे बताते समय
4: इचिबान
1: का उपयोग होता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो सबसे स्वादिष्ट, तो
4: ओइशी
1: यानी स्वादिष्ट के पहले
4: इचिबान
1: लगाकर बनेगा
4: इचिबान ओइशी।
0: अगर आप कई चीजों में से किसी एक के बारे में पूछना चाहते हो तो वाक्य के शुरू में कहेंगे
4: दोरे गा इचिबान।
0: इसमें
4: दोरे
0: प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है कौन सा।
1: अब अगर आपको पूछना है कि सबसे स्वादिष्ट कौन सा है, तो आप जापानी भाषा में कहेंगे दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: ओइशी देसु। इचिबान ओइशी देसु। दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: अब एक बातचीत सुनते हैं जिसमें एक ग्राहक उपहारों की दुकान में मिठाई चुनने की कोशिश कर रही है।

0: どれが一番人気がありますか？
1: これがおすすめです。
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
0: どれが一番人気がありますか？
3: सबसे लोकप्रिय कौन सा है?
2: इस वाक्य में
4: 人気があります
2: का अर्थ है लोकप्रिय है, जिसमें से
4: 人気
2: का मतलब है लोकप्रिय और
4: あります
2: है क्रिया
4: ある
2: यानी होना का मास रूप।
3: इसके बाद पुरुष ने उत्तर दिया,
1: これがおすすめです।
2: ये वाला बढ़िया है।
3: यहाँ
4: これ
3: का मतलब है ये वाला और
4: おすすめ
3: का भाव है बढ़िया। अपना सुझाव देते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
2: तो दोस्तों, आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: निंकी गा अरिमास, इचिबान निंकी गा अरिमास, दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमास का?
3: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। आप एक दुकान में सूटकेस खरीदने आए हैं। आप पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता के लिए जापानी शब्द है
4: यासुई, यासुई।
3: तो कोशिश कीजिए।
1: दोरे गा इचिबान यासुई देसु का? दोरे गा इचिबान यासुई देसु का?
2: अब मान लीजिए कि आप एक जापानी रेस्तरां में मेन्यू देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे सेट हैं और आप जानना चाहते हैं कि सबसे किफायती कौन सा है। किफायती के लिए जापानी शब्द है
4: ओतोकुना, ओतोकुना,
2: जो एक ना विशेषण है।
3: याद रखिएगा, वाक्य के अंत में ना विशेषण का इस्तेमाल करने के लिए अंत के ना को दिस में बदलते हैं। तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
1: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
2: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो दुकानदार की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: ご注文は？
4: ご注文は？
3: का अर्थ है ऑर्डर देना चाहेंगे। ग्राहकों से ऑर्डर लेते समय रेस्तरां के बैरे इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं।
4: चूमुंग
3: का अर्थ है ऑर्डर और ग्राहक को सम्मान देने के लिए इस शब्द से पहले गो लगाया गया है।
2: वाक्य के अंत में लगा वा विषय सूचक है। वाक्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन ग्राहक संदर्भ से इसका भाव समझ सकते हैं, जो है ऑर्डर देना चाहेंगे या क्या लेंगे।
3: आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: ご注文は？タムさん、何にする？
6: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
6: 味噌ラーメン。
5: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
6: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: अब हम लेकर आए हैं अंश, काइतो के साथ खाना पीना। आज हम बता रहे हैं रामेन के बारे में।
2: दोस्तों, रामेन मैदे से बने एक तरह के पतले नूडल्स हैं, जिन्हें उबालकर गर्म सूप में डालते हैं और ऊपर से उबला अंडा, मांस, सब्जियां और अन्य चीजें रखकर परोसते हैं।
3: मूल रूप से ये व्यंजन चीन से है, लेकिन जापान में इसके रूप में कई बदलाव आए हैं और अब ये जापान के प्रमुख व्यंजनों में गिना जाता है।
2: रामेन का सूप कई तरह का हो सकता है, जैसे चिकन या पोर्क की हड्डी या समुद्री खाद्यों से बना सूप। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मिसो यानी सोयाबीन के पेस्ट, नमक, सोया सॉस और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।
3: वैसे रामेन के नए और अनूठे रूप विकसित होते जा रहे हैं, जैसे चीज या ढेर सारी क्रीम वाला रामेन, और अलग अलग क्षेत्रों में इस व्यंजन की अलग अलग विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं।
2: अगर जापान आने का मौका मिले तो ये नूडल्स भी जरूर चख कर देखिएगा।
3: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में फोटोग्राफर मिया एक संगीत प्रस्तुति में जाएगी, तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। बोहिरा रूम में कब्रस के साहल के करीब 260 से जायद अफराद को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 20 से

0: लापता हो गए हैं। मकामी सराय इब्लाग का कहना है कि ये कश्ती शिमाली कब्रस में केरिनिया की बंदरगाह से निकलकर मुखालिफ साहिल पर तुर्की की तरफ जा रही थी। ये इतवार की दोपहर को उलट गई। समंदर में हेलीकॉप्टर्स और दीगर वसाइल की मदद से तलाश और बचाव की कार्रवाई जारी है। जराए इब्लाग ने हुकाम के हवाले से बताया है कि 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 23 लापता हैं। इत्तलात के मुताबिक कश्ती की बंदरगाह से रवानगी के फौरन बाद इसमें पानी भरना शुरू हो गया था। मकामी हुकाम इसके असबाब की छानबीन कर रहे हैं। आइसलैंड में लोगों ने इस तस्वाबे राय में वोट देकर यूरोपीय यूनियन में शमूलियत पर मुजाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। मकामी जराए इब्लाग का कहना है कि हफ्ते के रोज के इस तस्वाबे राय में डाले गए वोटों की गिनती से पता चलता है कि 52.8% इस तजवीज के खिलाफ, जबकि 47.2% इस तजवीज के हक में थे। 2024 में बनने वाली आइसलैंड की मखलूत हकूमत ने ये रेफरेंडम कराया है। मगरबी जराए इब्लाग ने खबर दी है कि हकूमत के इस इकदाम का एक मुहर्रिक नॉर्डिक खित्ते के इर्द गिर्द बदलता हुआ सलामती माहौल था, जहां आइसलैंड वाकई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने डेनमार्क के ग्रीनलैंड खुद मुख्तार इलाके पर कब्जा करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। ग्रीनलैंड भी नॉर्डिक खित्ते में वाकई है। यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के हामी उम्मीद कर रहे थे कि अगर आइसलैंड ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार कर ली और यूरो मुतारिफ कराया तो उसकी मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। तहम खदशात बरकरार है कि यूरोपीय यूनियन से इल्हाक आइसलैंड की माहीगीरी की आम सनत पर पाबंदियों का बाइस बन सकता है। आइसलैंड ने अपनी मईशत की तामीर नौ की खातिर 2009 में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन इस इल्हाक के बारे में मुहतात हुकूमत के इकतदार में आने के बाद रुकनियत के मुजाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। जापान की बुलंदतरीन चोटी माउंट फूजी की हाइकिंग पगडंडी पर बेहोश पाए जाने वाले इंडोनेशियाई शख्स की मौत हो गई है। 57 साला मस्कूरा शख्स हफ्ते के रोज को पैमाई टूर में हिस्सा ले रहा था। पुलिस का कहना है कि वो सुबह 11 बजे के करीब 5वें स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन खाने के वक्फे के बाद तयशुदा मकाम पर नहीं पहुंचा। कहा जाता है कि ये टूर उसके बगैर दोबारा शुरू हो गया। कोहपैमाओं ने शाम 5 बजे के करीब 7वें स्टेशन पर हाइकिंग पगडंडी पर इस शख्स को मुंह के बल बेहोश पड़े पाया। एक पहाड़ी हट के अमले को इसकी इतला दी गई और इसे 5वें स्टेशन पर लाया गया। बादशाह इसे फूजी कावागुची को कस्बे के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां इसे मुर्दा करार दे दिया गया। गौर किया जाता है कि इसकी मौत दिल के आरजे से हुई है।
1: अब आज की आम खबरों की चंद सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। नेपाल में बुध के शदीद सैलाब के बाद लापता अफराद की तादाद 1.5 गुना बढ़कर 4,700 से ज्यादा हो गई है, जबकि 900 से जायद अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। चीन के तिब्बत खुदमुख्तार इलाके में मुकामी हुकाम का कहना है कि एक ग्लेशियर गिरने से नेपाल और चीन की सरहद के साथ वाके इलाकों में सैलाब आया। अमरीकी अफवाज ने अपने हुर्मस के जजीरे लाराक पर 2 ईरानी रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

0: तो सुनिए और दोहराइए।
1: निंकी गा अरिमास। इचिबान निंकी गा अरिमास। दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमास का?
2: अब कुछ और खसूसियात में अव्वल मालूम करने की मशक करें। फ़र्ज़ करें कि आप सूटकेस खरीदने के लिए किसी दुकान में हैं और दुकानदार से पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता की जापानी है
1: यासुई। यासुई।
2: तो सामीन कोशिश करें।
3: दोरे गा इचिबान यासुई देस का? दोरे गा इचिबान यासुई देस का?
2: अब फ़र्ज़ करें कि आप किसी रेस्तोरान में हैं जहाँ बहुत सी अकसाम के सेट मेन्यू हैं। आपको सेट में मौजूद हर चीज़ की अलग अलग कीमत नहीं मालूम, चुनांचे आप वेटर से पूछना चाहते हैं कि इनमें सबसे बाकिफायत सेट कौन सा है। बाकिफायत की जापानी है
1: ओतोकुना। ओतोकुना।
2: ये ना इसमें सिफत है। जब ना इसमें सिफत जुमले के आखिर में हो तो उसका आखिरी हिस्सा ना हटाकर उसकी बजाय दिस लगाया जाता है। तो सामीन आप किस तरह पूछेंगे सबसे बाकिफायत कौन सा है?
3: दोरे गा इचिबान ओतोक देस का? दोरे गा इचिबान ओतोक देस का?
0: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
2: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज के जुमला मकालमे में वेटर ने इस्तेमाल किया है
4: गोचुमोन वा।
2: गोचुमोन वा के मायने हैं आप क्या लेंगे। रेस्तोरान या कैफे में वेटर ग्राहक से ऑर्डर लेने के लिए ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। चूमोन का मतलब है ऑर्डर। इससे कबल का गो ग्राहक को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल होता है जबकि बाद का वा मौजू को जाहिर करता है। यानी गोचुमोन वा का लफ्जी तर्जुमा हुआ आपका ऑर्डर। इसके बाद का हिस्सा क्या है बगैर कहे भी वाज़ेह है, इसलिए हज़फ़ कर दिया गया है।
0: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए।
5: गोचुमोन वा।
6: गोचुमोन वा।
5: गोचुमोन वा।
2: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें कायतो मुख्तलिफ चीज़ों में से इंतखाब पूछता है।
4: ご注文は？タムさん、何にする？
7: どれが一番おいしいですか？
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
7: 味噌ラーメン。
8: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
7: 私、味噌ラーメンにします。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: और अब खाने के शौकीन कायतों के मशहूरों का कॉर्नर। आज का मौजू रामेन है।
2: रामेन नूडल्स डिश है। गुंदे हुए आटे की बारीक पट्टियों या नूडल्स को गर्म पानी में उबालकर प्याले में सूप के साथ पेश किया जाता है। इसमें ऊपर से उबले हुए अंडे, गोश्त के पारचे या सब्जियों जैसी टॉपिंग्स डाली जाती हैं। ये बुनियादी तौर पर चीनी पकवान है। तहम जापान में मुनफरद तब्दीलियों से गुजरने के बाद अब ये जापान की नुमाइंदा डिशों में से एक है।
0: वैसे रामेन कई अकसाम के जायकों में भी दस्तयाब है।
2: जी हाँ, रामेन का सूप मुर्ग और खिंजीर की हड्डियों या सी फूड वगैरह से बनता है। जायके के लिए इसमें मिसो की फलियों का पेस्ट, नमक या सोया सॉस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते तो पहले से उसके अज्जा दरियाफ्त कर लेना बेहतर होगा। अब बाज़ दुकानों में हलाल, एलर्जी से पाक या सिर्फ सब्जियों के अज्जा से तैयार करता रामेन भी दस्तयाब है।
0: और अब तो रामेन के नित नए जायके भी दस्तयाब
2: है। जी हाँ, बावर्ची नए जायकों की तैयारी जारी रखते हैं। मसलन अब पनीर और गाढ़ी क्रीम के जायके बनाए गए हैं। कई इलाकों में वहाँ के मखसूस अंदाज के रामेन भी हैं। मकामी खानों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद जहाँ भी जाते हैं वहाँ के मकामी जायकों से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 31 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। नेपाल में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद लापता लोगों की संख्या 1.5 गुना बढ़कर 4,700 से अधिक हो गई है। वहीं 900 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार सोमवार सुबह तक नेपाल में 903 लोगों की मौत और 4,247 लोगों के लापता होने की पुष्टि हो चुकी थी। पिछली घोषणा के बाद इन दोनों आंकड़ों में इजाफा हुआ है। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी शामिल हैं। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार चीन में 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 546 लोग अभी भी लापता हैं।

नेपाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 10,000 सैन्य और अन्य कर्मियों को भेजा है। वो लापता लोगों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टरों और अन्य उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। मध्यवर्ती नेपाल के रसुवा में एक पनबिजली घर के आसपास के क्षेत्रों में भी खोज और बचाव अभियान जारी हैं। बताया जा रहा है कि वहां एक सुरंग में 100 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ के कारण कई इलाकों में बिजली और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने के कारण बहुत से निवासियों तक पहुंच पाना असंभव है। उन्होंने आगे कहा कि कई ऐसे समुदायों में भोजन, पेयजल, स्वच्छता उत्पाद और अन्य दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की कमी हो रही है। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों का कहना है कि ग्लेशियर के ढहने के कारण नेपाल चीन सीमा से लगे इलाकों में आकस्मिक बाढ़ आई थी। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सरकार के अधिकारियों ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। चीन की ओर के 90,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान के लिए 2100 से अधिक सैन्य, पुलिस और अन्य कर्मियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जांच डेटा और अन्य जानकारी के विश्लेषण से पता चलता है कि ये आपदा पेचिंग समयानुसार बुधवार सुबह लगभग 10:52 पर नेपाल में लगभग 5,200 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर के ढहने के कारण घटी थी। उन्होंने बताया कि इसकी वजह से बर्फ और चट्टाने तेजी से लुढ़कते हुए 4,000 मीटर नीचे आ गईं। उन्होंने कहा कि ये हिमस्खलन पहाड़ों की ढलानों से होते हुए चीन और नेपाल के बीच सीमा चौकी तक पहुंचा और मलबे के प्रवाह में बदल गया। अधिकारियों ने बताया कि हिमस्खलन को पुल तक पहुंचने और 27 इमारतों और संबंधित सुविधाओं सहित पूरे क्षेत्र को समतल करने में केवल 6 से 7 मिनट का समय लगा। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य स्थित लारक द्वीप पर ईरान के दो रॉकेट लॉन्चरों पर हमला किया है। अमरीकी अधिकारी ने एनएचके को बताया कि हमला रविवार को किया गया। अधिकारी ने बताया कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सैनिकों को जलमार्ग में रॉकेट दागने की तैयारी करते देखा गया। इन रॉकेटों पर बारूदी सुरंगें बिछाने की विस्फोटक सामग्री लदी थी। पिछले सप्ताह अमेरिका की केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने घोषणा की थी कि अमेरिकी सैनिकों ने जलडमरू मध्य के अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्ग में IRGC द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। हमले के बाद IRGC ने अपने वक्तव्य में कहा कि कई सैनिक और नागरिक हताहत हुए हैं। उसने कहा कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। भूमध्य सागर में साइप्रस के निकट 260 से अधिक लोगों को ले जा रही एक नौका पलट गई है। नौका में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लापता हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार ये नौका उत्तरी साइप्रस के किरिनिया बंदरगाह से तुर्की की ओर जा रही थी। रविवार दोपहर को ये पलट गई। समुद्र में हेलीकॉप्टरों और अन्य संसाधनों की मदद से खोज और बचाव अभियान जारी है। मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 23 अन्य अब भी लापता हैं। खबरों के मुताबिक बंदरगाह से रवाना होने के कुछ ही समय बाद नौका में पानी भरने लगा। स्थानीय अधिकारी कारणों की जांच कर रहे हैं। आइसलैंड के लोगों ने जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ में शामिल होने को लेकर वार्ता बहाल करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। स्थानीय मीडिया केंद्रों का कहना है कि शनिवार को हुए मतदान की गिनती से पता चलता है कि 52.8% लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में, जबकि 47.2% लोगों ने समर्थन में वोट डाला। ये जनमत संग्रह 2024 में सत्ता में आई आइसलैंड की गठबंधन सरकार द्वारा कराया गया। पश्चिमी मीडिया केंद्रों की खबरों के अनुसार सरकार के इस कदम के पीछे एक मुख्य कारण नॉर्डिक क्षेत्र के आसपास के सुरक्षा माहौल में हो रहे बदलाव है। गौरतलब है कि आइसलैंड इसी क्षेत्र में स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की इच्छा व्यक्त की है। ग्रीनलैंड भी नॉर्डिक क्षेत्र में स्थित है। यूरोपीय संघ की सदस्यता के समर्थकों को उम्मीद थी कि अगर आइसलैंड ईयू में शामिल हो जाता है और यूरो मुद्रा को अपना लेता है तो उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी। हालांकि ये चिंता बरकरार रही कि ईयू में शामिल होने से आइसलैंड के मुख्य मत्स्य उद्योग पर प्रतिबंध लग सकते हैं। 2009 में आइसलैंड ने अपनी अर्थव्यवस्था के बहाली प्रयासों के तहत ईयू में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन ईयू में प्रवेश को लेकर सतर्क रुख रखने वाली सरकार के सत्ता में आने के कारण इस वार्ता को स्थगित कर दिया गया। जापान के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट फुजी के एक हाइकिंग ट्रैक पर बेहोश पाए गए एक इंडोनेशियाई व्यक्ति की मौत हो गई है। ये 57 वर्षीय व्यक्ति शनिवार को अन्य लोगों के साथ पर्वतारोहण के लिए गया था। पुलिस के अनुसार वो सुबह करीब 11 बजे 5वें स्टेशन पर पहुंचा था, लेकिन दोपहर के भोजन के बाद वो निर्धारित समय पर मिलने के स्थान पर नहीं पहुंचा। हालांकि बाकी लोगों ने यात्रा जारी रखी। पर्वतारोहियों को ये व्यक्ति शाम करीब 5 बजे 7वें स्टेशन पर एक हाइकिंग ट्रैक पर औंधे मुंह बेहोश पड़ा मिला। इसके बाद पहाड़ी सराय के कर्मचारियों को सूचित किया गया, जो उसे 5वें स्टेशन पर लेकर गए। इसके बाद इस व्यक्ति को फुजी कावागुची को नगर के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। माना जा रहा है कि व्यक्ति की मौत हृदय रोग के कारण हुई है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 27वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि कई विकल्पों में से सबसे अच्छा कौन सा है।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम आज टोक्यो में रामेन की एक प्रसिद्ध दुकान में आई है। हारूसान हाउस का निवासी काइतो भी उसके साथ है। रेस्तरां में ऑर्डर देते समय ताम को यूकी की बात याद आई। यूकी एक जापानी छात्र है जो संगीत का अध्ययन कर रहा है और ताम से उसकी मुलाकात वियतनाम में स्वयं सेवकों के रूप में काम करते हुए हुई थी।
0: तो आइए सुनते हैं 27वें पाठ की बातचीत।
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番おいしいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले दुकानदार ने ताम और काइतो से कहा,
2: गोचुइमों वा?
0: ऑर्डर देना चाहेंगे?
1: फिर काइतो ने ताम से पूछा,
2: ताम-सान, नानी सुरु?
0: ताम, क्या लोगी?
1: ताम को समझ नहीं आया कि कौन सा व्यंजन चुने, इसलिए उसने काइतो से पूछा,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: सबसे स्वादिष्ट कौन सा है?
0: काइतो ने जवाब दिया,
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो।
0: मिसो रामेन बढ़िया होता है।
1: ताम सोचने लगी,
3: मिसो रामेन,
1: मिसो रामेन।
0: तभी उसे वियतनाम में यूकी से हुई बातचीत याद आई।
4: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो।
0: जापानी रामेन स्वादिष्ट होता है।
4: बोकु वा मिसो रामेन गा सुकी नांदा।
0: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
1: तो ताम ने दुकानदार से कहा,
3: वताशी मिसो रामेन नी शिमास।
1: मैं मिसो रामेन लूंगी।
0: लगता है मिसो रामेन के साथ ताम की कुछ पुरानी यादें भी लौट आई हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का,
1: यानी सबसे स्वादिष्ट कौन सा है। ये वाक्य सीखकर आप पूछ सकेंगे कि तीन या अधिक चीजों में से सबसे बढ़िया कौन सी चीज है।
0: इस वाक्य में
5: दोरे
0: का अर्थ है कौन सा, उसके बाद आया है गा, जिससे पता चलता है कि
5: दोरे
0: इस वाक्य का विषय है।
5: इचिबान
1: का अर्थ है पहला नंबर या सबसे, और
5: ओइशी
1: का अर्थ है स्वादिष्ट, इसलिए
5: इचिबान ओइशी
1: का अर्थ है सबसे स्वादिष्ट।
0: अंत में लगा है
5: देसु का,
0: और अंतिम ध्वनि का सुर ऊंचा है, जिसका मतलब है कि ये प्रश्न है।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि तीन या अधिक चीजों में से किसी एक को किसी विशेषता के आधार पर दूसरी चीजों की तुलना में सबसे आगे बताते समय
5: इचिबान
1: का उपयोग होता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो सबसे स्वादिष्ट, तो
5: ओइशी
1: यानी स्वादिष्ट के पहले
5: इचिबान
1: लगाकर बनेगा
5: इचिबान ओइशी।
0: अगर आप कई चीजों में से किसी एक के बारे में पूछना चाहते हो तो वाक्य के शुरू में कहेंगे
5: दोरे गा इचिबान।
0: इसमें
5: दोरे
0: प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है कौन सा।
1: अब अगर आपको पूछना है कि सबसे स्वादिष्ट कौन सा है, तो आप जापानी भाषा में कहेंगे दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: ओइशी देसु, इचिबान ओइशी देसु, दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
1: अब एक बातचीत सुनते हैं जिसमें एक ग्राहक उपहारों की दुकान में मिठाई चुनने की कोशिश कर रही है।
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
7: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
1: सबसे लोकप्रिय कौन सा है?
0: इस वाक्य में
5: निंकी गारिमस
0: का अर्थ है लोकप्रिय है, जिसमें से
5: निंकी
0: का मतलब है लोकप्रिय और
5: अरिमस
0: है क्रिया
5: अर
0: यानी होना का मास रूप।
1: इसके बाद पुरुष ने उत्तर दिया
7: कोरे गा ओसुमे देस।
0: ये वाला बढ़िया है।
1: यहाँ
5: कोरे
1: का मतलब है ये वाला और
5: ओसुसुमे
1: का भाव है बढ़िया। अपना सुझाव देते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो दोस्तों आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: निंकी गा अरिमस, इचिबान निंकी गा अरिमस, どれが一番人気がありますか？
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। आप एक दुकान में सूटकेस खरीदने आए हैं। आप पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता के लिए जापानी शब्द है
5: यासुई, यासुई।
1: तो कोशिश कीजिए।
7: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: अब मान लीजिए कि आप एक जापानी रेस्तरां में मेन्यू देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे सेट हैं और आप जानना चाहते हैं कि सबसे किफायती कौन सा है। किफायती के लिए जापानी शब्द है
5: ओतोकुना, ओतोकुना,
0: जो एक ना विशेषण है।
1: याद रखिएगा वाक्य के अंत में ना विशेषण का इस्तेमाल करने के लिए अंत के ना को दिस में बदलते हैं। तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो दुकानदार की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: गोचुमोन वा,
5: गोचुमोन वा
1: का अर्थ है ऑर्डर देना चाहेंगे। ग्राहकों से ऑर्डर लेते समय रेस्तरां के बैरे इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं।
5: चुमोन
1: का अर्थ है ऑर्डर और ग्राहक को सम्मान देने के लिए इस शब्द से पहले गो लगाया गया है।
0: वाक्य के अंत में लगा वा विषय सूचक है। वाक्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन ग्राहक संदर्भ से इसका भाव समझ सकते हैं, जो है ऑर्डर देना चाहेंगे या क्या लेंगे।
1: आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: गोचुमोन वा, तामसान नानी नी सुरु?
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो।
3: मिसो रामेन?
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज हम बता रहे हैं रामेन के बारे में।
0: दोस्तों रामेन मैदे से बने एक तरह के पतले नूडल्स हैं, जिन्हें उबालकर गर्म सूप में डालते हैं और ऊपर से उबला अंडा, मांस, सब्जियां और अन्य चीजें रखकर परोसते हैं।
1: मूल रूप से ये व्यंजन चीन से है, लेकिन जापान में इसके रूप में कई बदलाव आए हैं और अब ये जापान के प्रमुख व्यंजनों में गिना जाता है।
0: रामेन का सूप कई तरह का हो सकता है, जैसे चिकन या पोर्क की हड्डी या समुद्री खाद्यों से बना सूप। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मिसो यानी सोयाबीन के पेस्ट, नमक, सोया सॉस और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।
1: वैसे रामेन के नए और अनूठे रूप विकसित होते जा रहे हैं, जैसे चीज या ढेर सारी क्रीम वाला रामेन, और अलग अलग क्षेत्रों में इस व्यंजन की अलग अलग विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं।
0: अगर जापान आने का मौका मिले तो ये नूडल्स भी जरूर चख कर देखिएगा।
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में फोटोग्राफर मिया एक संगीत प्रस्तुति में जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। बोहिरा रूम में कब्रस के साहल के करीब 260 से जायद अफराद को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 20 से जायद लापता हो गए हैं। मकामी जराए इब्लाग का कहना है कि ये कश्ती शिमाली कब्रस में केरिनिया की बंदरगाह से निकलकर मुखालिफ साहिल पर तुर्की की तरफ जा रही थी, ये इतवार की दोपहर को उलट गई। समंदर में हेलीकॉप्टर्स और दीगर वसाइल की मदद से तलाश और बचाव की कार्रवाई जारी है। ज़राए इब्लाग ने हुकाम के हवाले से बताया है कि 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 23 लापता हैं। इत्तलात के मुताबिक कश्ती की बंदरगाह से रवानगी के फौरन बाद इसमें पानी भरना शुरू हो गया था। मकामी हुकाम इसके असबाब की छानबीन कर रहे हैं। आइसलैंड में लोगों ने इस्तेवाबे राय में वोट देकर यूरोपीय यूनियन में शमूलियत पर मुजाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। मकामी ज़राए इब्लाग का कहना है कि हफ्ते के रोज के इस्तेवाबे राय में डाले गए वोटों की गिनती से पता चलता है कि 52.8% इस तजवीज के खिलाफ, जबकि 47.2% इस तजवीज के हक में थे। 2024 में बनने वाली आइसलैंड की मखलूत हकूमत ने ये रेफरेंडम कराया है। मगरबी जराए इब्लाग ने खबर दी है कि हकूमत के इस इकदाम का एक मुहर्रिक नॉर्डिक खित्ते के इर्द गिर्द बदलता हुआ सलामती माहौल था, जहां आइसलैंड वाकई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने डेनमार्क के ग्रीनलैंड खुद मुख्तार इलाके पर कब्जा करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। ग्रीनलैंड भी नॉर्डिक खित्ते में वाकई है। यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के हामी उम्मीद कर रहे थे कि अगर आइसलैंड ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार कर ली और यूरो मुतारिफ कराया तो उसकी मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। तहम खदशात बरकरार है कि यूरोपीय यूनियन से इलहाक आइसलैंड की माहीगीरी की आम सनत पर पाबंदियों का बाइस बन सकता है। आइसलैंड ने अपनी मईशत की तामीर नौ की खातिर 2009 में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन इस इलहाक के बारे में मुहतात हुकूमत के इकतदार में आने के बाद रुकनियत के मुजाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। जापान की बुलंदतरीन चोटी माउंट फूजी की हाइकिंग पगडंडी पर बेहोश पाए जाने वाले इंडोनेशियाई शख्स की मौत हो गई है। 57 साला मस्कूरा शख्स हफ्ते के रोज कोह पैमाई टूर में हिस्सा ले रहा था। पुलिस का कहना है कि वो सुबह 11 बजे के करीब 5वें स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन खाने के वक्फे के बाद तयशुदा मकाम पर नहीं पहुंचा। कहा जाता है कि ये टूर उसके बगैर दोबारा शुरू हो गया। कोह पैमाओ ने शाम 5 बजे के करीब 7वें स्टेशन पर हाइकिंग पगडंडी पर इस शख्स को मुंह के बल बेहोश पड़े पाया। एक पहाड़ी हट के अमले को इसकी इत्तला दी गई और इसे 5वें स्टेशन पर लाया गया। बाद हजां इसे फूजी कावागुची को कस्बे के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां इसे मुर्दा करार दे दिया गया। खबर किया जाता है कि इसकी मौत दिल के आरजे से हुई है।
1: अब आज की आम खबरों की चंद सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। नेपाल में बुध के शदीद सैलाब के बाद लापता अफराद की तादाद 1.5 गुना बढ़कर 4,700 से ज्यादा हो गई है, जबकि 900 से जायद अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। चीन के तिब्बत खुदमुख्तार इलाके में मुकामी हुकाम का कहना है कि एक ग्लेशियर गिरने से नेपाल और चीन की सरहद के साथ वाके इलाकों में सैलाब आया। अमरीकी अफवाज ने अपने हुर्मुज़ के जजीरे लाराक पर 2 ईरानी रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।